किसका, या ले किसका मामा, कुछ रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्टिंग कि जो कहो संगीत से जा रखे पूरा पंगोरानिंग पंगोरानिंग बुएनस नोचेस सलूडोस दे स्टे साचानिंग फैमिलिया अल्वारादो ग्रेफा फैमिलिया अल्वारादो ग्रेफा रिंच का तिंगीचे कई तुतापी ले किसका आइडियो गुनालिया 8.5 FM ya chamananga de kishkai unalia ke pora serenita serenita mayo kangichi ya kai bishin chishunchi.